0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
3: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
2: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
4: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
2: लव इमोशंस अते रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
5: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 0290631618, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।

0: कुछ गल्लां कहनिया नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
1: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा भी गूंगा है।
0: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
2: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकती, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
0: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: फुलकारी उत्ते बेल बूटियां मित्रां दे चादरे ते पा दे मोरनी। ससी अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल ते तुसी सुन रहे हो हां जी रेडियो। हां जी।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल
4: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ हुंदी
3: कुछ गल्लां कहनिया नहीं पैंदियां बस महसूस करनिया पैंदियां ने।
4: एहो गल है ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाना।
3: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है।
5: जिंदगी किवें कटांगी मैं नहीं रह सकती ओदे बिना मैनू ओ चाहिदा।
3: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 September रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन लव इमोशंस अदर रिलेशनशिप्स दी कहानी बोल पावे ना बोल

0: एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल
1: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ हुंदी
0: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां बस महसूस करनियां पैंदियां नी
1: एहो गल्या ते मैं हुणे अपनी जुबान वट के हो जाना
0: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं दिल दी सुनन दी है
2: जिंदगी किवें कटांगे मैं नहीं रह सकती ओदे बिना मैनू ओ चाहिदा
0: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन लव इमोशंस अदर रिलेशनशिप्स दी कहानी बोल पावे ना बोल
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ली एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
4: सतकाल मैं हां जी शेर गिल ते तुसी सुन रहे हो रेडियो हां जी 1674 AM

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
3: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा भी गूंगा है।
2: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
4: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
2: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।
5: आजा प्यार की हो डील।
6: डील बोले तो
7: हार्ट हार्ट।
6: हाँ यार, सौदा सौदा।
7: ओहो,
5: दोनों डील कर
6: टाइट, वेरी टाइट।

0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो। गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू। नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491। स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिलवाले नहीं होते।
4: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।

0: ताकि पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है।
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: रेडियो हांजी 1674।
5: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 167।

रोवर्स, रेंज रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा, सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा, सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
0: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: हां जी, हां जी।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ IME एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: तेनू ओदे नाल मिलाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी।
1: Is now the ultimate power in the universe.
2: Radio Hanji 16748.

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: Hanji Radio.
4: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
8: जिपी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा, अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
9: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
8: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो, गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नू।
4: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: Hanji Hanji, yoy Hanji Hanji,
3: Hanji Radio.
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: यू आर लिसनिंग
4: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: रेडियो हांजी, स्टे ट्यून्ड।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी स्विम ग्रोवर, स्विम ग्रोवर, हां जी हां जी, 16-74 ये नहीं है 71-72, ये है 16-74, ये है 16-74, सुनते रहो सुनते रहो। हां जी एम।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: अपनी टोयोटा चूज कर ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-4500-186-212-216 Old G Long Road Hoppers Crossing वेरबी टोयोटा The smart choice.
2: Hi, this is Arbaaz Khan, and you're listening to Hanji Radio 167 4 AM.
3: Radio Hanji 1674.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो, सत श्री अकाल जी, मैं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे

0: प्रेम राष्ट्राओ मन तन अंतर एही सुआओ
1: नेत्रो पेत रसक होए मन बिकसै साधु चरण तोए
0: भक्त जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग
1: एक बसती जे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया
0: ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए
1: प्रभु क्षण दीन दयाल भगत उछल सदा कृपाल
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल
1: आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार
0: जो जो जपै सो होए पुनीत भक्त पाए लावे मन ही
1: हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
0: सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए
1: अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन भाई
0: बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत
1: पलि सुकरनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूरन गुरुमंत
0: साध संग प्राप्त हो निवास सर्व सुख नानक प्रगास
1: मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठवी श्लोक
0: सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप सतनाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: जब अकार कुछ न दृष्टि ताप पुन तब कहते होता
0: जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध के संग कमात
1: जब इसका वर्ण चिहिना जापत तब हर सो को किसे व्याप्त
0: जब अपन आप अपार ब्रह्म तम हो कहां किसो होवत परम
1: अपन खेलिया वर्ती जा नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रा केवल तानी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी
1: जब एक हर गम अपार तब नरक सुरक को कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्राव सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो हो कित ठाए
1: जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे
0: आपन चले तब करने हार नानक ठाकुर अगम पार
1: अविनाशी सुखी अपने आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रव सोए तब जम की त्रास कहो किस होए
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
0: जब नाथ नरंजन अगोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
1: आपन आप आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा
0: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तूता
1: जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान
0: जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लागत कहो कीस
1: जह जो स्वरूपी जोत संग समावै तह किसे भू कौन तृप्तावै
0: कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार
1: जा अपनी सुवा अपन संग बनाई तब कौन माए बा मित्र सुत भाई
0: जह सर्व कला आपह परवीन तह वेदक तेव कहां कोचीन
1: जब अपने आप आप उड़तारे तो सगन अपसगन कहां बिचार है
0: जह अपन ऊंच अपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चीरा
1: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गजानो आप
0: जह अछल अछेद अभेद समाया ऊहा किसह व्याप्त माया
1: आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश
0: जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता
1: जह अपन आप आप पतियारा तह कौन कथै कौन सुन न हारा
0: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा
1: जह आप रचियो पर पंच आकार तेह गुण में कीनो विस्तार
0: पाप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंशावत
1: जाल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार
0: दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान
1: अपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तो नानक एक है
0: जह अवगत भक्त है आप जह पसरे पासार संत प्रताप
1: तुहु पाक का आपै धनी उनकी शोभा उन्हु बनी
0: आप है कौत करे आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग
1: जिस भावै तुसी अपन नाय लावै जिस भावै तुस खेल खिलावै
0: बेशुमार अथा अगंत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक्की श्लोक
0: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार सतनाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
1: आप कथै आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार
0: जंत सभावै तां सृष्टो पाए अपने भाणे लए समाए
1: तुम ते पिन्ने किछ होए आपन सूत सब जगत परोए
0: जाको प्रभु जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए
1: सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता
0: जी जंत्र सब ता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ
1: जिस राखै तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मनो बिसार
0: तिस्ता जबर कहां को जाए सब सरेक निरंजन राय
1: जी की जुग जाकै सुभात अंतर बाहर जानो साथ
0: गुण निदान बे अंत पार नानक दास दा बलिहार
1: पूरन पूर रह दयाल सब ऊपर होवत कृपाल
0: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप
1: तत् पालै जी अनुभव पात जो जो रचियो सूत सहत्यार
0: जिस भावै तिस लय मिलाए भक्त करै हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक इक जानिया
0: जन लागा हर इक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए
1: सेवक को सेवा बने आए हुक्म बूझ परम पद पाए
0: इसते ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसिया निरंकार
1: बंधन तोर पै निर्वैर अंधन पूजै गुर के पैर
0: एह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपह मेले
1: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद
0: राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार
1: अमृत वचन हर की गुण गावो प्राण तन का हे सुहाओ
0: आठ पहर प्रापी खुह नीरा मिटे अज्ञान बिन सहंदीरा
1: सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो
0: हालत पालत दो लिहो सवार राम नाम अंतर उतार
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते साच परीखिया
0: मनता नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी
0: टीका टीक रखो मन माहे नानक बहुर न आवे जाहे
1: इसते दूर कहा को जाए उबरे रखन हार त्याए
0: निरभउ जपै सगल भउ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै
1: जिस प्रभु राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख
0: चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार
1: सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ता कह कारज पूरा
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ
1: चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान
1: जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल
0: अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया
1: सुख मनि सुख अमृत पव नाम भल जना कै मन विश्राम अठ बाई श्लोक
0: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु काला का मीठा
0: सगल समिग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे
1: नौनद अमृत पव का नाम देही में इसका विश्राम
0: सुन समाध अनहत नाद कहन न जाई अचार्य विस्माद
1: इन देखिया जिसे आप दिखाए नानक ते संसो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहे आप भगवंत
1: करण माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
0: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड तै दिसै समाहे
0: जिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक
0: वाणी प्रभु की सब को बोलै आप अडूल न कबहु डूलै
1: सर्व करा कर खेलै खेल मोल न पाई है गुणे अमोल
0: सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत धार रहे हो स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद परम का नाश नानक तिन मैं एहो विसास
0: संत जना का पीखन सा ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने सो बचन सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जिन जाता तिस की एह रहत सत बचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सो इश्क माने करन करावन हर प्रभु जाने
0: अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सा मोही
1: आप सत किया सब सत तिस प्रभु ते सगली उत्पत
0: तिस पावे ता करे विस्थार तिस पावे ता एकंकार
1: अनक कला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए
0: कवन लिप्त कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर
1: अंतर गज से आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए
0: सर्व भूत अवतारा सर्व नैन आपे खनहारा
1: सगल समगरी जाका तना आपन जस आप ही सुना
0: आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया
1: सबके मदल पत्तो रहे जो कुछ कहना सो आप ही कहे
0: आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे ता ले समाए
1: इसते होए सुनाही बुरा उरे कहो किने कुछ करा
0: आप ला कर तू ततनी की आपे जाने अपने जी की
1: आप साज तारी सब साज ओत पोत आपन संग्राह
0: ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए
1: इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान
0: जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभु सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान
0: धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया
1: जानावन कहे सुआओ जन कह संचित आवे नाओ
0: आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार
1: सुख मनि सुख अमृत पव नाम भगत जना के मन विश्राम अठ तेई श्लोक
0: पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे
0: सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस नित्य आगो तरंग संत जना की दूर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहो साध संग आगन सागर तरहो
1: हर तन की भर लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साग के बचन अमोलीक लाल एह रतन
0: संत कमावत हो तो उदार आप तरह लोक कह निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय
1: प्रगटे गोपाल महत के माथे नानक उतरे तिन कै साथे
0: शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए
1: मिट गए बैर पै सबरेन अमृत नाम साध संगलैन
0: सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव
1: आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुरस न कहते
0: कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभि खेप हमारी
1: कब की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत
0: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान
1: सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते उच पाए स्थान बहर न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए
0: खेम शांतरिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग पव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रगा सब कै मद सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बीता समदर्शी एक दृष्टि
0: ते फल तिस जान कै मुख पाने गुरु नानक नाम बचन मन सुने
1: इहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भक्त कै मन विश्राम
0: कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जन ते छुटै
1: जा कै मस्तक क्रम प्रपाए साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रवचीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उधारै
0: निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से वै परम साध नाम निर्मलता के करम
0: सब ते उचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते उचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम पत जना कै मन विश्राम अठ चौबीस श्लोक

अंत ना सिफती कहन ना अंत अंत ना करना देन ना अंत अंत ना वेखण सुन ना अंत अंत ना जापै क्या मनमंत।

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरी बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को जब एक नए परिपेक्ष में देखना शुरू किया, एक सबसे बड़ी बात जो रिश्ते आज कहीं न कहीं बहुत मुश्किल होते जा रहे थे, लगता था कि उन पे बहुत काम करने की जरूरत है, कैसे ये रिश्ते सही हो सकते हैं, एक जो हमें स्ट्रेंथ मिली, जो ताकत मिली, वो ये कि जो इमेज मैं क्रिएट करना चाहता हूं, जिस रिश्ते में मैं हूं, वो मैं खुद कर सकता हूं। वो इमेज क्रिएट करने के बाद जो वाइब्रेशंस जाने शुरू होती हैं, तो अपने आप खुद ब खुद वो रिश्ते सुधरने लग सकते हैं। ये हमने कहा था हर बार की तरह के अनुभव करके देखें, क्योंकि जो जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते जाएंगे उनका अनुभव हमें सुदृढ़ करता जाएगा कि हम सही रास्ते पर हैं। आगे और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो रिश्ते जो इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए कैसे सुदृढ़ हो सकते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो हमें बहुत आश्वासन मिला है आपके साथ जो हम इन दिनों बात कर रहे हैं, कि वो रिश्ते जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता, चाहे वो बच्चे के साथ का रिश्ता है या बॉस के साथ का रिश्ता, एक जो हमें ये मिला कि उन्हें ठीक किया जा सकता है। जहां हम बिल्कुल हताश हो गए थे, हमें लगता था कि इसमें कोई चांस नहीं है, देयर इज नो अदर वे, आई डोंट हैव अ चॉइस, वहां ये रास्ता दिखा और अपने ही हाथ में होता हुआ दिखा। अब ठीक है, टाइम लगेगा, भी काम कर सकती हूँ मैं उसके ऊपर। आज थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं।
1: तो सबसे पहला सूत्र जो हमने देखा कि वेयर डज द रिलेशनशिप स्टार्ट, इट स्टार्ट्स इन माय कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में जब दूसरे का चित्र निर्माण करे तो ध्यान से करें कि कौन से कलर्स यूज करते हैं, और कोशिश करें कि उनकी एक एक विशेषताओं के रंग से लेट अस क्रिएट दैट पिक्चर इन आवर कॉन्शियस।
0: मैंने देखा, हमने मतलब देखा है हमने, जब तो हमें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है जब हम दूसरे की इमेज गंदी वाली क्रिएट कर रहे हैं,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाई इट मस्ट बी हैपनिंग, बट इट मस्ट बी, मे बी इट मेक्स मी फील बेटर अबाउट माई सेल्फ,
0: कि मैं ठीक,
1: दैट कुड बी द ओनली लॉजिक, अदरवाइज और कोई लॉजिक ही नहीं उस पर बैठता। जस्ट बाय सेइंग कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, इट गिव्स मी द फीलिंग दैट आई एम बेटर, और दूसरा इट ऑल्सो शायद गिव्स मी द परमिशन टू रिएक्ट विद योर बिहेवियर, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ जब मैं संपर्क में आ रही हूँ तो आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। मैं कभी गुस्सा हो रही हूँ आपके साथ, कभी आपके साथ मैं परेशान हो रही हूँ, कभी आप पर मैं चिढ़ रही हूँ, ये सब मैं कर रही हूँ व्हेन आई कम इन इंटरेक्शन विद यू, लेकिन वो सब मेरा जो व्यवहार है वो जस्टिफाइड कब होगा?
0: जब मैं ये कहूँ कि आप तो हो ही खराब,
1: नहीं तो वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप अच्छे हो और मेरा व्यवहार ठीक नहीं है तो फिर कौन खराब हो गया?
0: मैं।
1: सो दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम।
0: तो दोनों में से एक तो खराब होगा ना,
1: क्योंकि मेरा व्यवहार मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरा व्यवहार ऐसा है क्योंकि आप ऐसे हो। सो दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपने व्यवहार को चेंज करना है, उसके लिए पहले मुझे अपनी सोच को चेंज करना है, उसके लिए मुझे उनको नहीं चेंज करना है, मुझे उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को चेंज करना है, क्योंकि समवेयर इट डिपेंड्स ऑन विच कलर स्पेक्स आई एम वेयरिंग। आपने तो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, लेकिन अब डिपेंड करता है ना मैंने कौन से रंग का चश्मा पहना।
0: अगर आपने लाल पहन लिया तो ये ग्रीन भी आपको लाल दिखे।
1: यस, एंड फिर आपको उस लाल रंग के चश्मे से देखते हुए मुझे आप लाल ही दिखाई देंगे, और फिर मेरा रिश्ता किस कलर से जुड़ा? रेड से जुड़ा, बट एक्चुअली तो आपने ग्रीन पहना है। तो समवेयर माई रिलेशनशिप इज नॉट ऑन द राइट फाउंडेशन। सो इट्स नॉट अबाउट आप कौन से रंग के हैं, इट्स अबाउट मेरा जो परसेप्शन का चश्मा है वो कौन से कलर का है। और जैसे आपने कहा कि हम ज्यादा क्यों नेगेटिविटी देखते हैं, क्योंकि अगर हम जितना नेगेटिविटी का चिंतन करते जाएंगे तो हमारा चश्मा कौन से रंग का हो जाएगा?
0: नेगेटिव।
1: अब आपके अंदर हो सकता है बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मेरा चश्मे का रंग ही नेगेटिव है, तो आप मुझे कैसे दिखाई देंगे?
0: कम्प्लीटली नेगेटिव।
1: एंड फिर मेरा जो रिलेशनशिप आपके साथ जुड़ेगा वो किस आधार पर होगा? बेस्ड ऑन दैट कलर दैट आई हैव क्रिएटेड विथ यू। तो यस, बहुत इजी है कहना कि वो है ही ऐसे, और थोड़ा सा चैलेंजिंग है अपने ऊपर बैठकर वर्क करके अपने परसेप्शन को चेंज करना। चॉइस इज माइन। क्योंकि जितनी बार आई एम गोइंग टू से वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे, आई एम क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी and I am transmitting negative energy, and then I will receive negative energy and then I will stay in pain. And ye pura process maine create kiya. अब अगर मैं दर्द की बजाय खुशी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ तो मुझे अपने चश्मे का रंग चेंज करना पड़ेगा. रिलेशनशिप मीन्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो हर स्टेप पर चेक करते जाए मैं कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा हूँ. स्टॉप थिंकिंग वो कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं. लेट्स से कि आपके अंदर 99 कमजोरियां हैं फिर भी एक विशेषता तो होगी. अच्छा इफ यू आर फाइंडिंग समवन होगा नहीं लेकिन यू आर फाइंडिंग समवन जिसके अंदर कोई विशेषताएं नहीं है तो भी मैं कौन सी एनर्जी फिर उसको ट्रांसमिट करता हूँ. दैट इज स्टिल गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन माई कॉन्शियसनेस. हम जो दृष्टिकोण से दूसरे को देखते हैं वो उस पर भी डिपेंडेंट है कि मेरी कॉन्शियसनेस क्या है बिकॉज वो मेरे चश्मे का कलर है.
0: इनफैक्ट यस मैं पूरी दुनिया को भी एक्चुअली किस कलर से देखता हूँ.
1: एंड दैट्स वाई सेम दुनिया and someone will say the world is so beautiful and someone will say the world is a big mess.
0: Actually yes, you know agar hum deep mein jaye jisko burai dekhne ki aadat hai jo burai karta hai wo sabki hi burai kar raha hota hai kuch bhi acha nahi lag raha hota unhe
1: to kahin na kahin wo sare log bure nahi hain lekin mujhe hi dekhne ka nazariya aur isiliye parmatma ne aakar hame kaha ki swa parivartan karenge to vishwa parivartan अपने आप हो जाएगा. हमें औरों को चेंज नहीं करना. हम अपने एटीट्यूड को अपने परसेप्शन को चेंज करते हैं तो वही लोग वो वैसे के वैसे होते हैं. दे डोंट चेंज. वही लोग हमें अलग दिखाई देने लगते हैं. व्हाट हैज हैपेंड वेयर हैज द चेंज टेकन प्लेस इट्स हियर. सो इट इज वेरी इजी टू लुक आउटसाइड लिटिल चैलेंजिंग टू लुक इनसाइड लेकिन सोल्यूशन यहीं पर
0: इनसाइड.
1: तो अगर कोई अपने ऊपर सचमुच में काम करके रिजल्ट पाना चाहता है तो उसको फिर काम तो वहीं करना पड़ेगा जहां काम हो सकता है. आप ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करें. यू वर्क ऑन द रिलेशनशिप देयर एंड फिर आपको रिजल्ट नहीं मिले फिर आप और फ्रस्ट्रेट होते जाएं और फिर आप और एक दूसरे से कटते जाएं. वी आर गेटिंग नो वेयर.
0: एक्चुअली वेरी ट्रू. यू नो हम कोशिश जब हम करते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ आज आएंगे तो मैं ठीक रहूंगी और फिर मैं ठीक ठीक बिहेव कर रही होती हूँ. मैं सही बातें बोलने का प्रयास कर रही होती हूँ और मैं बोलती भी हूँ सही लेकिन तब भी वो रिश्ता ठीक नहीं हो पाता क्योंकि
1: सोचते. आप देखो हम सब ने ये आर्ट सा मास्टर कर लिया है कि अंदर भले हम नेगेटिव सोचते हैं उसको कन्वर्ट करके हम पॉजिटिव बाहर देते हैं क्योंकि हमने सोचा रिश्ता मतलब क्या. कम्युनिकेशन रिश्ता मतलब जो मैं आपसे बोलती हूँ. रिश्ता मतलब जो मैं आपके साथ करती हूँ. रिश्ता मतलब जो हम एक दूसरे के प्रति सोचते हैं. तो कहीं भी कोई भी रिश्ते में अगर कहीं ऊपर नीचे आ रहा है जस्ट स्टॉप एंड सी कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. नहीं इम्पोर्टेंट. आप देखो हम जब सोचते भी हैं सारा दिन तो हम ये सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ. बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज आई फील कि मैं अच्छा तब फील करूंगी जब आप मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे. बट एक्चुअली मैं अच्छा तब फील करूंगी जब मैं आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ. नो डिफिकल्ट.
0: नो नो नो यस एक्चुअली
1: सी हाँ जस्ट सी द कनेक्टिविटी. आई एम थिंकिंग कि आप मेरे बारे में अच्छा बोलो आप मेरे बारे में अच्छा सोचो तो मुझे अच्छा लगेगा. बट एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग लाइक दिस. एनर्जी इज फर्स्ट फ्लोइंग लाइक दिस. तो मैं अगर आपके बारे में अच्छा सोचूंगी तो सबसे पहले मुझे अच्छा फील होगा.
0: ऑफकोर्स अगर वेरी ट्रू. अगर कोई मुझे व्यक्ति अच्छा लगता है कोई देख के मतलब इफ आई लुक एट यू एंड आई फील गुड अबाउट यू.
1: आई फील गुड. I feel good. Now it is possible ki I don't think very good about you. It is possible ki I don't think very good about you. Ya mera vyavahar bhi shayad aapke sath utna acha nahi hai. Fir bhi aapko kaisa feel karna hai wo fir bhi aapke hath mein hai. So let's start just working on myself. Take the control back. I am going to keep the control in my hand. पर अपने पर फोकस नहीं होगा तो ध्यान ज्यादा क्या होगा. आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या बोलता है वो मेरे बारे में क्या सोचता है. एंड देन आई कंज्यूम दैट एनर्जी. वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे थे और ये सब कंज्यूम करके वो अच्छे नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट वो अच्छे नहीं है, एंड बुरा किसको अब फील होने वाला है?
0: मुझे, क्योंकि नहीं और होने लग जाता है ना, बिकॉज इट हर्ट सो डीपली कि उन्होंने मेरे बारे में ये कहा, यू नो दे थिंक दिस वे अबाउट मी, मेरे बारे में ऐसा सोच लिया, और फिर मैं उनके बारे में अगर अच्छा सोचते भी होंगे तो उनके बारे में बुरा सोचूंगे.
1: एग्जैक्टली. सो अगेन,
0: मैं उनके बारे में अच्छा सोचती थी, मैं उन्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं.
1: भले ना वो मेरे बारे में सोचे, मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे क्या सोचना है. दैट्स व्हाई द फोकस बिकम्स मैं एंड मैं.
0: लेकिन सोच क्या रही हूँ? yes. फोकस अभी भी मैं ही था,
1: मैं ही था, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ. पहले फोकस ये था कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में. तो पहले वो था कि मेरे बारे में वो क्या सोच रहे हैं, बिकॉज माई फीलिंग वॉज डिपेंडेंट ऑन यू. बट नाउ आई रियलाइज्ड माई फीलिंग इज माई क्रिएशन. That is what was important. Let's say आपने green साड़ी पहनी है, feel good about that. If you feel good, then that's your creation. अब ये जरूरी नहीं है कि दुनिया आकर उसको praise करे. उसमें क्या होगा, अगर चार लोग appreciate करेंगे, दो लोग criticize भी करेंगे. लेकिन अगर मेरी मन की स्थिति बार बार ऐसे fluctuate होने वाली है, then मेरे हाथ में क्या है. लेकिन अब जब हमें समझ में आ गया कि क्रिएट हम करने वाले हैं, आई कैन चूज वॉट टू क्रिएट एंड बी वेरी केयरफुल सारा दिन. आई एम क्रिएटिंग, जस्ट दैट मच अवेयरनेस इज नीडेड सारा दिन कि आई एम क्रिएटिंग. तो जर्नी कैसे हो जाएगी? वेरी सिंपल. द फर्स्ट पॉइंट था कि वेयर डज द रिलेशनशिप गेट क्रिएटेड, अपनी कॉन्शियसनेस में. दूसरा पॉइंट बहुत जो इम्पोर्टेंट है याद रखना, जो हमने कई बार रिपीट किया है लेकिन वो फंडामेंटल है, एंड दैट इज हु हर्ट्स हु.
0: I hurt myself. ये तो एक पूरा स्टेटमेंट ऐसी है.
1: ये लेकिन जितना प्रोफाउंड ये स्टेटमेंट है, उतना ही ये प्रैक्टिकल में डिफिकल्ट लगता है प्रैक्टिस करने के लिए. क्योंकि जब भी हम रिएक्ट करते हैं, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं?
0: आपने हर्ट किया,
1: आपने हर्ट किया. तो हु हर्ट्स हु? आई हर्ट माई सेल्फ. दर्द मैं अपने आप को दे रही हूँ. ये जितनी बार हम बार बार अपने आप को समझाएंगे, तो हमारा रिएक्ट करना बंद हो जाएगा.
0: और इनफैक्ट फिर मुझे उन्हें समझाना तो पड़ेगा. अगेन यू नो, मुझे समझाना ये नहीं करना कि मैं उनको अपने आप को जस्टिफाई ना करूं, भी कोई मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, लेकिन बिना हर्ट हुए
1: स्टेबिलिटी.
0: हाँ, अगर मैं कह पाऊं कि थी, इट वॉज नॉट लाइक दिस,
1: दैट्स ओके, दैट इज फाइन. लेकिन आई हैव टू रिमेम्बर कि आपने मुझे हर्ट नहीं किया है, मैं खुद अपने आप को हर्ट कर रही हूँ. इमोशनल हर्ट ये कोई और मुझे नहीं कर सकता है. फिजिकली कोई मुझे मार सकता है, लेकिन यहां तक किसी का हाथ नहीं पहुंचता. यहां ओनली आई हैव द टोटल कंट्रोल. बार बार जब भी वो दर्द थोड़ा सा भी क्रिएट होना शुरू हो, आई एम हर्टिंग माई सेल्फ, स्टॉप, वर्क, मूव अहेड. लेकिन जहां मैंने बोला दे आर हर्टिंग मी, तो वो दर्द तो कभी तक चलता जाएगा. वी आर नॉट ट्राइंग टू से कि सामने वाला जो बोल रहा है वो बहुत परफेक्ट बोल रहा है. ठीक है, मे बी यू आर नॉट फाइंडिंग कि जो वो बोल रहे हैं दैट्स राइट फॉर यू. लेकिन हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है? आपको पता है, यहां हमने एक लिस्ट बनाई होती है किन लोगों ने हमें हर्ट किया है, और काफी लिस्ट होती है,
0: काफी बड़ी होती है.
1: और उस लिस्ट को हमने काफी समय से पकड़ा हुआ होता है. एंड टूडे इफ आई जस्ट सिट बैक विद माई सेल्फ एंड आई से हु हर्ट मी एक्चुअली, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, कोई मेरा लाखों लेकर चला गया, किसी की वजह से तो मेरा बिजनेस ही पूरा कोलैप्स हो गया, किसी ने मुझे रिश्ते में धोखा दे दिया, व्हाट इज आई से, बट हुज क्रिएटिंग द पेन? उन्होंने जो करना था सो किया. राइट और रॉन्ग इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ. इम्पोर्टेंट इज दर्द फिर भी कौन क्रिएट कर रहा है, कब तक? सी, बाहर आप जो कर रहे हो आप कर रहे हो, बट देन यू आर नॉट इन माई कंट्रोल. यू नो, यू आर नॉट. अगर आज आप मेरे साथ प्रॉपर्टी पर लड़ रहे हो, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल. आज आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन के मेरा लाखों रुपए लेके चले गए, नॉट इन माई कंट्रोल. आज आप एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में आप रिश्ता तोड़कर बाहर कहीं चले गए, नॉट इन माई कंट्रोल. लेकिन माई पेन,
0: इट इज इन माई कंट्रोल,
1: दैट्स आई एम क्रिएटिंग. तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट. क्योंकि जहां सेल्फ पर मैनेज किया, तो फिर सिचुएशन को हैंडल करना इजी हो जाएगा. अभी हम कहते हैं सिचुएशन इतनी बड़ी थी, दे कॉज्ड मी हर्ट. नो, देयर इज ओनली वन वर्ड देयर हु कॉजेज पेन टू मी, दैट्स माय सेल्फ. दे कैन डू थिंग्स, जो उनको करना है वो मुझे छोड़कर जा सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, लेकिन दर्द फिर भी मैं क्रिएट करता हूँ. मेनी पीपल विल से लेकिन आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया किया, फिर भी दर्द किसने क्रिएट किया?
0: क्योंकि दर्द मुझे इसका हुआ कि वो चला गया, या दर्द मुझे इसका हुआ कि उन्होंने मुझे धोखा दिया. यू नो, सो धोखा दिया एक सिचुएशन, लेकिन वो
1: दर्द किसने क्रिएट किया?
0: हाँ, कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं उस पर इतना ट्रस्ट करता था, मेरे साथ ऐसा हुआ. यस, वेरी ट्रू. यू नो,
1: इट्स ओके इफ आई एम इन पेन, लेट मी वर्क एंड मैं उसको हील करूंगी. लेकिन मैं उसको हील तभी कर पाऊंगी जब आई रियलाइज कि ये दर्द मैं क्रिएट कर रही हूँ. हम कई बार जीवन भर उस दर्द को इसलिए पकड़ के रहते हैं
0: कि मैंने उसी ने किया,
1: उसने हाँ. किया तो वो आकर उसको ठीक करेगा.
0: जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा, कहते हैं ना हर बार.
1: ठीक है, तो अब किसने दर्द दिया? हमें ही दवा देनी है ना. दैट इज द पॉइंट. वी आर नॉट सेइंग कि हाँ दर्द होता है, कुछ बात ऐसी होती
0: है. वी कीप ऑन वेटिंग दैट पर्सन विल कम एंड अपोलोजाइज और थिंग्स लाइक दैट एंड देन थिंग्स बट थिंग्स विल नेवर बिकम सेम. इवन इफ दैट पर्सन कम्स और वो माफी मांग के मुझे हील करने की कोशिश करता है, मैं क्या हील होंगी? मैंने वो जो वो पूरा टाइम गुजारा है, मैं उसको वो कह के मैं ना उसको जीने दूंगी ना खुद जीऊंगी,
1: क्योंकि मैंने इतना दर्द क्रिएट किया हुआ है. अब मेरे पास देने के लिए क्या है उस रिश्ते में? दर्द ही है. तो इसलिए एक दिन बैठ कर आज ही रात को सोने से पहले उस लिस्ट को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर आए. हाउ मेनी पीपल हैव हर्ट मी इन माई लाइफ एंड देन डिलीट
0: वाइप ऑफ कम्प्लीटली एक्चुअली
1: एंड यू विल बी एबल टू वाइप ऑफ. वी आर नॉट सेइंग दैट द पेन विल गो अवे. Maybe not immediately.
0: But I think that person
1: that
0: will go away.
1: Person will go away. That is fundamental. First let the person go away. Phir to pain dheere dheere jaldi khatam ho jayega. Kyunki main creator hoon to mujhe finish karna easy hai. Lekin aap creator hain.
0: To phir wo to jab tak woh nahi aayega tab tak, jab tak uske saath waisa nahi hoga tab tak nahi. You know, like so many things we have.
1: Yeah. So ek ek ko lete jao. Situation ko rewind karna chahte ho ek din ke liye kar lo. रिवाइंड करो और फिर भी देखो कि सिचुएशन बाहर थी, दर्द यहां था. डिवोर्स बाहर था, दर्द यहां था. बिजनेस कोलैप्स बाहर था, दर्द यहां था. हुए बहुत साल हो गए और दर्द तो अभी तक पकड़ा हुआ है. आज भी एक रिवाइंड बटन दबाओ और सारा कुछ.
0: बिकॉज
1: वी कैन क्राई राइट हियर.
0: यह आई कैन ऑफ कोर्स.
1: सो वेयर इज द पर्सन? वो व्यक्ति तो अभी है भी नहीं, बट वी कैन क्राई राइट हियर.
0: बिकॉज यस, यू नो समवेयर डीप विद इन आई केप्ट ऑन फीलिंग दैट ही इज द ओनली वन हु कैन हील. शी इज द ओनली वन हु कैन कम चेंज द सिचुएशन और डू समथिंग.
1: तो फिर तो हमारे हाथ में कुछ
0: भी नहीं, और वो कभी भी नहीं आने वाला.
1: एंड फिर हम जीवन दर्द में ही बिताएंगे. तो जब हम इस पर्सपेक्टिव से ले लेंगे कि आई एम द क्रिएटर ऑफ द पेन, आई हर्ट माई सेल्फ, तो अपने आप को ठीक करना बहुत इजी हो जाएगा.
0: फर्स्ट इज लाइक वाइंडिंग अप दैट पर्सन.
1: जस्ट लेट गो, बिकॉज वो लोग हैं जो शायद आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो उनको यहाँ क्यों घर में बिठा कर रखा
0: है? सालों पुराने होंगे. मतलब सी आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई कैन एक्चुअली स्टिल रिमेम्बर
1: ऑल द पीपल देयर.
0: लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ मतलब आई एम नॉट इवन इन टच. लेकिन वो उनकी इमेज है.
1: वो फिर भी आपके घर में रहते हैं. लेकिन यहाँ
0: घर पर रहते हैं और मतलब वो जब तक मैं उनका डिलीट नहीं करूंगी अपने उससे, तब तक वो रहेंगे.
1: यस. नाउ अगर आपको अभी भी किसी भी रिश्ते में थोड़ा सा भी मुश्किल लग रही है, इट्स ओनली बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन. आई एम क्रिएटिंग द हर्ट. आई एम क्रिएटिंग द हर्ट. जैसे ही हम अपने ऊपर इस एंगल से वर्क करना शुरू कर देंगे, तो हम दर्द को खत्म करना शुरू कर देंगे. अब आपने तो जो किया सो किया, बट इफ आई गेट हील्ड तो मेरा आपके साथ रिश्ता कैसा हो जाएगा?
0: हाँ, बिल्कुल परफेक्ट.
1: एंड रिलेशनशिप
0: आपके साथ मुझे वो खत्म हो जाएगा ना. आपसे जो उम्मीद थी या आपसे ये एक्सपेक्टेशन,
1: और आपके ऊपर जो ब्लेम था.
0: हाँ,
1: पहली बात, आपके ऊपर जो मैंने ब्लेम लगाया था कि आप मेरे दर्द का कारण है, वो खत्म हो जाएगा. तो फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है. आई हैव टू ओनली फॉरगिव माई सेल्फ. एंड अगर हम दूसरे को भी देखते हैं कि दूसरा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमें ये हमने पहले भी देखा कि आई क्रिएट माई पेन एंड इसी तरह यू क्रिएट योर पेन. मैं आपका भी पेन क्रिएट नहीं करती हूँ. सो सिमिलरली इफ आई सी यू इन पेन
0: बिकॉज ऑफ मी,
1: एंड अगर आप दर्द में बहुत कुछ ऊपर नीचे बोल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये स्मृति है कि आप दर्द में हैं बिकॉज ऑफ योर ओन पेन, तो मुझे स्टेबल रहना मेरे लिए आसान है. और उसके बाद अगर मैं स्टेबल रहूं तो मेरा व्यवहार आपके साथ कैसा हो जाएगा?
0: normal, stable,
1: normal. So everything just seems to fall into place.
0: Mm.
1: Not that it will get done today, but it becomes easier. ये करना संभव हो जाता है जब मुझे ये पता चलता है मुझे सिर्फ अपने को हील करना है दूसरा जैसा है वैसा ही है लेकिन वो तो ऐसे बात करते हैं करने दो लेकिन वो तो मुझे अब्यूज करते हैं ये करते हैं करने दो When I change, the world changes. Automatically stability आएगी दूसरी तरफ लेकिन एक साइड भी दर्द में जाता फिर दूसरी साइड भी जाता तो दर्द की फ्रीक्वेंसी
0: Actually, it feels so good. मैं बात करते करते ही I can see so many relationships becoming much better. हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बाप बेटे का रिलेशनशिप यू नो कहीं एक जो एक कहा जाता था एक चुप कर ले और दूसरा It can
1: Absolutely.
0: happen. It happens.
1: And no one can hurt me. I met a brother and उसने अपनी मदर से बहुत सालों से बात नहीं की थी because कुछ हुआ था past incident. And फिर वो program के end पर आए और उन्होंने कहा कि my mother is in lot of pain and I am in lot of pain and अब मेरे father नहीं रहे and my mother is alone and you know whatever. I said आप अपनी मदर से जाके बात क्यों नहीं कर लेते and you know everything will become okay. And he says नहीं but आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया उन्होंने ऐसा किया उन्होंने वैसा किया I said लेकिन उन्होंने जो किया सो किया हम अब क्या कर रहे हैं आप इतना जो दर्द अपने अंदर अब क्रिएट कर रहे हैं ये पहले आपको मिल रहा है फिर आपकी वाइफ को मिलेगा आपके बच्चों को मिलेगा वो एक रिलेशनशिप में नहीं रहता है वो दर्द औरों में भी जाता है टू फिनिश दिस हाउ मच टाइम विल इट टेक हाउ मच टाइम गो टॉक एंड इट्स फिनिश्ड ही डिड इट आफ्टर द प्रोग्राम ही वेंट देयर नेक्स्ट डे ही केम फॉर अनदर प्रोग्राम चलिए तो बहुत ईजी था क्योंकि होता तो बहुत ईजी है ना बट हमें टाइम लगता है दैट्स ओके That is my journey. I can take my time.
0: Actually, जिस दिन ये realize हो गया कि वो कारण है ही नहीं मेरी pain.
1: मैं हूँ और वो मेरे हाथ में है अब मुझे कितनी जल्दी उसको finish करना.
0: तो ठीक है फिर मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ मेरे को 10 दिन चाहिए मुझे 1 दिन चाहिए मुझे 100 दिन चाहिए मुझे 1 second चाहिए
1: Whatever. That's my choice. But at least the power
0: is in my hand now.
1: अब मैं अपने रिश्ते को जब चाहूँ तब ठीक कर सकती हूँ पहले आई वॉज अ विक्टिम तो मैं वेट कर रही थी और फिर मुझे सारे रिश्ते उल्टा बिखरते हुए दिखाई दिए क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि दूसरे लोग उनको ठीक करेंगे सो दैट इज द फीलिंग ऑफ अ विक्टिम कि मेरे साथ तो कोई भी ठीक नहीं है
0: मुझे कितने सारे जो सीन्स हैं वो रिवाइंड होके बेटर रिश्ते दिखते हुए नजर आते
1: हैं बिकम्स वेरी वेरी इजी So the second important point is who hurts who. I have to always remember I hurt myself. तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि ये जो labels हम लोगों को लगा देते हैं तो एक बार मैंने label लगा दिया कनुप्रिया ऐसी है लगा दिया अब आपके ऊपर label. अब हर रोज के interaction के बाद मैं उस label के अंदर
0: एक एक incident
1: बैगेज भरते जाती हूँ भरते जाती उसने ऐसा किया उसने ऐसा बोला
0: देखा ये जस्टिफाई हुआ ये पुख्ता हो गई मेरी बात ये लेबल ठीक हो गया
1: हाँ, तो मैं वो लेबल लगाकर रोज उसमें बैगेज बैगेज भरते जाती हूँ एंड जितना समय हम इस बैगेज को पकड़ कर रखेंगे उतना वो बैगेज
0: भारी
1: होता जाएगा एंड इट कैन रीच अ स्टेज वेर आई कैन स्टिंक इनसाइड बिकॉज आई हैव सो मच बैगेज
0: तो मुझे ले डूबेगा ना वो भारी होगा कि मैं डूब जाऊँ
1: एब्सोल्युटली तो कहीं ना कहीं ये जो हमने पहले तो अभ्यास कर दिया है लेबल्स लगाने का तो कहीं ना कहीं तो वो लेबल्स ही हम लगाना बंद करें लेकिन उसमें फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा अब टाइम लगेगा इस यात्रा पर लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम हर रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि एक एक लेबल के साथ बैगेज आज हमने क्या ऐड कर दिया था इज इट पॉसिबल कि मैं वो बैगेज निकाल कर फिनिश करूं उसको हल्का करूं क्योंकि वो निकालने से हु इज गोइंग टू फील बेटर
0: आई विल फील
1: दिस इज मोर अबाउट यू नो होल्डिंग थिंग्स अबाउट अदर पीपल तो इफ आई कीप होल्डिंग दोज थिंग्स यहां बहुत भारी होता जाएगा और फिर मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी कि मुझे एक्चुअली क्या करना है क्योंकि मेरा ये सारा बैगेज तो और लोगों से बहुत भर जाएगा तो बहुत इजी है इसको अगर सारा दिन में हम कॉन्शियसली ट्राई करें कि जैसे ही हम कुछ भरने लगे यहां ये तो ऐसे हैं ये तो ऐसे हैं स्टॉप नो आई डोंट नीड दिस दिस इज अननेसेसरी वेट आई एम नॉट गोइंग टू कैरी सो मच वेट तो एंड ऑफ द डे कैसा फील होगा
0: लाइट
1: I will feel very, very light. तो baggage जो परमात्मा शिव बाबा भी कहते कि ये इतना बड़ा बोझ जो लेकर सारा दिन चलते हो इसको हल्का करो. एंड बैगेज इज ऑलवेज अबाउट अदर्स. जो मुझे लगता है कि हाँ नहीं मुझे कैरी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं यू नो मैंने जस्टिफाई करते जाती हूँ अपने आप को कैरी करना. तो कॉन्शियसली ट्राई करें कि जैसे ही वो बैगेज रखने लगे उसी टाइम ही, क्योंकि ये बैगेज इतना भारी हो सकता है कि यहां तो दर्द देगा ही देगा, लेकिन यही बैगेज एक ना एक दिन कोई फिजिकल बीमारी का भी कारण बनता है.
0: और इनफैक्ट आजकल हम जितनी भी फिजिकल बीमारियां हैं उसमें पीछे कहीं ना कहीं जो मेंटल इलनेस है वो है.
1: कोई ना कोई हर्ट, कोई ना कोई गिल्ट, कोई ना कोई रिजेंटमेंट ये पकड़ के रखा 5 साल 10 साल 20 साल इसको पकड़ कर रखा हुआ है. आज वो बीमारी का रूप ले लिया. वो तो वही है, तो वाई है अब सफर किसको करना पड़ेगा. मी वाई जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर दैट आई एम कैरिंग
0: सो मच बैगेज.
1: तो क्यों ना रोज ही, इसीलिए हमने कहा कंप्यूटर की स्कैनिंग, इसलिए जो हम वो हर एक घंटे के बाद 1 मिनट करते हैं ना, तो रात को भी क्यों हल्का करना है. हर एक घंटे के बाद ही अगर कुछ ऐसा भर गया हो स्टॉप इट्स ओके, वो जैसे है वैसे है, आई डोंट नीड टू कैरी इट. नहीं तो आप देखो हमने अननेसेसरली बहुत लोगों का भर लिया है.
0: अच्छा वो जैसे हैं वो अपने परिपेक्ष में तो सही है,
1: सही है.
0: हम हमेशा दूसरे को ऐसे
1: जजमेंट हो.
0: हाँ वही जो मैं एक्चुअली आई लाइक दैट थिंग यू नो कि जो चीज मुझे नहीं अच्छी लग रही है उसको मैं एक जजमेंटल बन जाता हूँ कि वो चीज ही अच्छी नहीं है. यू नो दिस इज एक्चुअली द मोमेंट वी रियलाइज दिस डिफरेंस.
1: माई डिसलाइक एंड जजमेंट ये दो डिफरेंट चीज है.
0: आई डिसलाइक दैट थिंग बट इट डज नॉट मीन दैट इट्स बैड.
1: इट्स बैड या इट मे बी गुड फॉर देम.
0: इनफैक्ट इट्स अमेजिंग यू नो अगर हम रिश्तों को सचमुच में देखें कि हमने क्या किया हुआ है और उसको सॉर्ट आउट करने का भी प्रोसेस हमारे ही हाथ में है. थैंक यू सो मच सीता शिवानी. हर बार हम देखते हैं कि जिंदगी आसान होने का एक माध्यम है कि अगर हम थोड़ा सा अपना जो कलर है वो एक सारे चश्मे उतार के सारे लेबल्स उतार के क्लैरिटी से देख पाए और वो हमें ज्ञान से मिल रहा है, परमात्मा का ज्ञान जो मिलता है. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: कोई बात कोई सवाल आपके पास है स्वागत करते हैं आपका. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0987-3-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन रिश्तों को एक नए रूप में देखने का ये प्रोसेस ये खोज चलती रहेगी. अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।
1: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू हां ते आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज़ होवेगी 21 अगस्त नू।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: फुलकारी उत्ते बेल बूटियां मित्रां दे चादरे ते पा दे मोरी। ससगा जी मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल ते तुसी सुन रहे हो हांजी रेडियो। हांजी।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने।
3: हाय नी, इन्ना सोहना मुंडा वी गूंगा है।
2: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
4: मुंडे नु चाहिदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी, तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं होना तेरे पीछे।
2: लव इमोशंस अते रिलेशनशिप्स दी कहानी। रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1674 AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: एसजी चाइल्ड सपोर्ट पैकेज, एसजी मतलब सिंगापुर चाइल्ड सपोर्ट पैकेज, ते बच्चे दे जन्म तो लैके 17 साल दी उम्र तक लगभग 70,000 सिंगापुरियन डॉलर जड़े ने वो बच्चे दे बैंक खाते दे विच जमा करेगी सिंगापुर सरकार। आबादी घट रही है, सिंगापुरियन जिहड़े ने इक्को ही बच्चे नूं पैदा कर रहे ने, सो दूजा तीजा बच्चा पैदा करन दे उत्ते हुण इह जिहड़ी है बेबी गिफ्ट मिलना हैगा। जन्म दे टाइम दे उत्ते $10,000 दा बेबी गिफ्ट मिलना,
1: वाह।
0: ते फिर हौली हौली जिहड़ी टोटल रकम है उहनूं किवें उहनां ने डिवाइड कीता, ते फिर उहनां ने सीडीए मतलब चाइल्ड डिवेलपमेंट एक अकाउंट बनूगा बैंकां च सीडीए, ते पहला $5,000 दी किश्त पऊगी, फिर सीडीए दे विच इदां इदां करके $5,000 दीआं अलग अलग किश्तां जिहड़ियां पैंदियां रहिणगियां 17 साल होण तक उहदे अकाउंट दे विच $70,000 दी रकम बन जांदी है। दुबई छड्डण दा फैसला तां चंगा कीता सी, नहीं ते बंब बुंब बजना सी उत्थे, कोई बुर्ज खलीफा दे उत्थे उहदा बुर्ज अड जाणा सी खलीफा
1: अगे, खलीफा अगे चल
0: जाणा, हाले वी कोई भरोसा नहीं हैगा। आस्ट्रेलिया आउण दा फैसला तुसीं चंगा लिया, पर हुण सिंगापुर सिर्फ जवाक पैदा करन दे लई जाणे, आखरी खबर भी दस दी, वैसे तो यह खबर भी खबर दसती सी, पर यह खबर हैगी इंडिया दे विच कांदा एक्सप्रेस चलाएगी, कांदा
1: कांदा
0: कांदा
1: सिर
0: दर्द भी होने लग
1: जाए,
0: सिर दर्द हो जाता धुप च खड़े हो जो
1: अच्छा ए नहीं मैनूं पता हां, पर अहीं छोटे छोटे होंदे ना किसे ने दस्सिया ही जे गड्डा जे तुसीं बीमार होणा ना गड्डा ना इदां
0: रख ओही ओही
1: ओहदे विच इदां
0: सिर दर्द शुरू हो जाऊगा फीवर हो जाऊगा तुहानूं,
1: ओह असली हो जांदा होता,
0: मैं सुणिया ही है
1: यार, मैं भी सुणिया ही
0: करिया नहीं, एडा हौसला ही नहीं पिया प्याज दी जिहड़ी थोक कीमतां सी पिछले साल 22 रुपए 23 रुपए 25 रुपए किलो थोक दा जिहड़ा रेट चल रहा सी, ऐतकी ओह 45 रुपए 50 रुपए पर केजी नूं चला गया,
1: डबल हो गया, डबल हो गया,
0: ते ओह जदों रिटेल च आंदा ते होर 60 रुपए 70 65 रुपए किलो तक पहुंच गया। प्याज एक बेसिक नेसेसिटी है, बड़े लोग तां इंडिया दे विच प्याज ते आए मुक्की मार के रोटी कल्ली प्याज दे नाल खा लैंदे,
1: पहला केजो दे प्याज दी रोटी
0: खा, ए बड़ा फिर हुण उत्थे औखा हो गया कम हुण इंडिया च, ते सरकार नूं इह हो रिहा है कि किते प्याज दे करके आम लोग भी सरकार दे अगेंस्ट ना हो जाण, इस करके उहनां ने नासिक च प्याज खासे ने, हाँ। नासिक तो ट्रेना चल रही ने भर भर के 800 मीट्रिक टन दी पहली ट्रेन गई है
1: प्याजा दाल भरी
0: प्याजा दे नाल,
1: ओहो
0: ते एदां करके उहनां ने 4-5 ट्रेना चलातियां ने ऑलरेडी, ते उहदे च उहनां ने रेट एक फिक्स करके भेजे भी 35 रुपए पर केजी तो उपर दा प्याज बिक नहीं सकदा ये ट्रेन चो जिहड़ा गया है, रिटेल मार्केट दे विच इन्ने दा भी
1: मतलब जे अगे ट्रेन तो सारे ने अगे अगे ले लिया प्याज तो अगे 35 तो उत्ते नहीं बेच सकदे,
0: नहीं मतलब वो बेचन गई फिर
1: पर फिर उहना दे फिर कोई ना कोई लेबल लूबल कहणगे ना भी ये कादा एक्सप्रेस दा आया वा ये दूजा अपने उधर दा,
0: देखो वो तो हुण मतलब यह है भी उन्होंने सरकार ने भेजती है ते स्टॉकिंग तो करनगे जिहड़े बड़े व्यापारी ने,
1: सही गल है, कुछ ना कुछ अलग कर देंगे डब्बे जेडे एक्सप्रेस दे ताकि ये 35 डॉलर
0: बहुत तगड़ा बिजनेस है इंडिया दे विच जेड़ा सब्जियां दी सप्लाई दा, तुसी कदे तुसी देखी आजादपुर मंडी देखी है दिल्ली,
1: ला ला ला ला।
0: अच्छा, बहुत बड़ी मंडी है,
1: अच्छा जी
0: सब्जियां मतलब कहंदे ने के एक टाइम तां ये सीगा भी एशिया च सब तो वड्डी मंडी सी, इंडिया च तां होऊगी ओ घटो घट,
1: ठीक है,
0: ते फलां सब्जियां सारे जिन्ने भी उत्थे सवेरे सवेरे उत्थों ट्रक निकलदे ने ते सारी रात उत्थे काम

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हाँ जी हाँ जी
1: रेडियो हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।